0: स्नैपचैट पर आप अपने बॉयफ्रेंड को एक बहुत ही हॉट फोटो भेज रहे थे और गलती से किसी और के पास चली गई वो फोटो, अब क्या होगा जिंदगी में आपका यार?
1: The secret box.
0: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी सीक्रेट कन्फेशन है ना, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड आई प्रॉमिस टू हियर यू आउट एंड ऑल्सो रोशिफाई यू इन द प्रोसेस. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
2: हेलो रोशी, हाउ आर यू?
0: आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू नॉटी गर्ल?
2: I am very nice, very good, enjoying life.
0: Nice, good, enjoying life में naughty तो नहीं आया, but आपका confession तो मुझे थोड़ा सा naughty लग रहा है. What have you been up to, darling?
2: Okay, so मेरा confession है कि so basically छुट्टी का दिन था, ठीक है, almost एक साल पुरानी बात है, and so मेरा boyfriend जो था उसने मुझे अपने घर पे invite किया, उसके parents नहीं थे घर पे. So I was like, ठीक है, now मेरे boyfriend का एक identical twin है. तो मैं जब उसके घर गई तो उसके ट्विन ने दरवाजा खोला. ना मुझे समझ में आ गया था कि वो ट्विन ने दरवाजा खोला है, नो आई प्रिटेंडेड कि बॉयफ्रेंड है मेरा. सो आई जस्ट लेट इट बी लाइक दैट एंड ही आल्सो प्रिटेंडेड टू बी माय बॉयफ्रेंड ओनली. तो वो मेरे सामने, आई डोंट नो, या तो वो मुझे प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था या क्या कर रहा था, बट सो इट स्टार्टेड लाइक दैट. वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही वाज आस्किंग मी हाउ माय डे वेंट एंड ब्लाह ब्लाह ब्लाह ब्लाह. माय कन्वर्सेशन चली, उसने मुझे लंच कराया एंड देन वी sat together to watch Netflix. And then we cuddled on the sofa and that cuddling like turned into a little bit, you know, heated make out session. And वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, वो चलता ही गया.
0: एक सेकंड, तो लाइक बेसिकली वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं था, आपका बॉयफ्रेंड का जुड़वा भाई था और ये आपको पता था सारे टाइम कि वो बॉयफ्रेंड का जुड़वा भाई है. अगर मेरी नानी है होती तो पता क्या कहती?
2: क्या कहती?
0: कि कुड़ी तेनू शर्म नहीं आंदी, अपने बॉयफ्रेंड दे पाई दे नाल एंज लगी हुई सी चुमिया ते चपाटियां. हाँ,
2: so he was being really sweet to me and obviously जब वो बिल्कुल physically मेरे boyfriend जैसा है तो मैं attracted, तो उस तो उससे भी उतनी ही थी ना.
0: This is bizarre, bro. तो like सिर्फ make out हुआ था या did you end up like going all the way?
2: Yeah, I wanted to, but but
0: last minute पे आपको morals याद आ गए थे अपने? हाँ,
2: उसको आ गए थे शायद.
0: बेब ऑनेस्टली बताए, अगर इस पूरी स्टोरी में किसी को रोशिफिकेशन की जरूरत है वो आपके असली बॉयफ्रेंड को है, बिकॉज आप और आपके बॉयफ्रेंड का भाई तो मौज कर रहे थे. रोशिफाई कर दूं आपको?
2: बिल्कुल कर दो.
0: देयर यू गो बेब,
3: यू हैव बीन रोशिफाइड.
0: It was very nice talking to you. आपसे बात करते करते जो मैं बहक गई थी, मुझे वो भी बहुत मजे आए. All the best to you. आपको एक के प्राइस पे दो मिल गया, अब और क्या ही कह सकता है कोई इंसान की दुनिया में. जो भी ये देख रहा है, सुन रहा है, वो भी इतना लकी हो जाए कि टू फॉर द प्राइस ऑफ वन मिल जाए उसे. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी कोई कन्फेशन है, why don't you hit me up on Insta या FB and we will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do what you have to do, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

मुझसे क्या झूठ बोलना, आई नो कि आप दो दो दिन तक नहाते नहीं हो, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि अपने बाथरूम में अगर आप सिंगल हो आपको दो टॉवल्स हैंग करने चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक फंक्शुई का टिप है। अगर मेरी तरह आप सिंगल हो एंड यू वांट टू अट्रैक्ट अ पार्टनर इनटू योर लाइफ, देन वन ऑफ द थिंग्स यू शुड डू इज अपने बाथरूम में यू हैव टू हैंग टू टॉवल्स। अब ज्यादा हीरो बन के तीन टॉवल्स हैंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज यू हैव सम इंटरेस्टिंग आइडियाज अबाउट लव एंड ट्राइंगल्स। इसे ट्राई करके देखो, वंस इट वर्क्स फॉर यू। मुझे थैंक यू बोलने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

में गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यकायकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा।

0: स्नैपचैट पर आप अपने बॉयफ्रेंड को एक बहुत ही हॉट फोटो भेजे थे और गलती से किसी और के पास चली गई वो फोटो, अब क्या होगा जिंदगी में आपका यार?
1: The secret box.
0: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी सीक्रेट कन्फेशन है ना, why don't you hit me up and I promise to hear you out and also roshify you in the process. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
2: हेलो रोशी, हाउ आर यू?
0: आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू नॉटी गर्ल?
2: I am very nice, very good, enjoying life.
0: Nice, good, enjoying life में naughty तो नहीं आया, but आपका confession तो मुझे थोड़ा सा naughty लग रहा है. What have you been up to, darling?
2: Okay, so मेरा confession है कि so basically छुट्टी का दिन था, ठीक है, almost एक साल पुरानी बात है, and so मेरा boyfriend जो था उसने मुझे अपने घर पे invite किया, उसके parents नहीं थे घर पे. सो आई वाज लाइक ठीक है. नाउ मेरे बॉयफ्रेंड का एक आइडेंटिकल ट्विन है, तो मैं जब उसके घर गई तो उसके ट्विन ने दरवाजा खोला. नाउ मुझे समझ में आ गया था कि वो ट्विन ने दरवाजा खोला है, नाउ आई प्रिटेंडेड कि बॉयफ्रेंड है मेरा, सो आई जस्ट लेट इट बी लाइक दैट एंड ही आल्सो प्रिटेंडेड टू बी माय बॉयफ्रेंड ओनली. तो वो मेरे सामने, आई डोंट नो, या तो वो मुझे प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था या क्या कर रहा था, बट सो इट स्टार्टेड लाइक दैट. वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही वाज आस्किंग मी हाउ माय डे वेंट एंड ब्लाह ब्लाह ब्लाह ब्लाह. माय कन्वर्सेशन चली, उसने मुझे लंच कराया एंड देन वी सैट टुगेदर टू वॉच नेटफ्लिक्स एंड देन वी कडल्ड ऑन द सोफा एंड दैट कडलिंग लाइक टर्न्ड इनटू अ लिटिल बिट हीटेड मेकआउट सेशन एंड वो चलता गया चलता गया चलता गया, वो चलता ही गया.
0: एक सेकंड, तो लाइक बेसिकली वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं था, आपका बॉयफ्रेंड का जुड़वा भाई था और ये आपको पता था सारे टाइम कि वो बॉयफ्रेंड का जुड़वा भाई है. अगर मेरी नानी होती तो पता क्या कहती?
2: क्या कहती?
0: कि कुड़ी तेनू शर्म नहीं आंदी, अपने बॉयफ्रेंड दे पाई दे नाल एंज लगी हुई सी चुमिया ते चपाटियां. हां,
2: सो शी वाज बीइंग रियली स्वीट टू मी एंड ऑब्वियसली जब वो बिल्कुल फिजिकली मेरे बॉयफ्रेंड जैसा है तो मैं अट्रैक्टेड, तो उस तो उससे भी उतनी ही थी ना.
0: This is bizarre, bro. तो like सिर्फ make out हुआ था या did you end up like going all the way?
2: Yeah, I wanted to, but but
0: last minute पे आपको morals याद आ गए थे अपने? हाँ,
2: उसको आ गए थे शायद.
0: बेब ऑनेस्टली बताए, अगर इस पूरी स्टोरी में किसी को रोशिफिकेशन की जरूरत है वो आपके असली बॉयफ्रेंड को है, बिकॉज आप और आपके बॉयफ्रेंड का भाई तो मौज कर रहे थे. रोशिफाई कर दूं आपको?
2: बिल्कुल कर दो.
0: देयर यू गो बेब,
3: यू हैव बीन रोशिफाइड.
0: It was very nice talking to you. आपसे बात करते करते जो मैं बहक गई थी मुझे वो भी बहुत मजे आए. All the best to you. आपको एक के प्राइस पे दो मिल गया, अब और क्या ही कह सकता है कोई इंसान की दुनिया में. जो भी ये देख रहा है सुन रहा है वो भी इतना लकी हो जाए कि टू फॉर द प्राइस ऑफ वन मिल जाए उसे. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी कोई कन्फेशन है, why don't you hit me up on Insta या FB and we will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do what you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एच सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल दे

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया, और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन, और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं, म्यूजिक सुनेंगे। This is India's most definitive Hindi film music countdown, the Mirchi Top 20. And talking of number 20, we've got A.R. Rahman, Irshad Kamil, Vedang Raina aur Nilanjana Ghosh. Ek aisa gaana jo pata nahi kyun main har jagah sun raha hoon. This is Mascara from Main Wapas Aunga.
3: Number 20.

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpayee ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर ये गाना किसी छोटी फिल्म का हिस्सा ना होता तो शायद आज और ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे होते, और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है। आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं। जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं। ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है, और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते। कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था।

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोस बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी फुल भोजपुरी तड़का एंड ये है धमाल 4 से।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 Mirchi It's hot Suren ke saath only on Mirchi It's hot
1: number 17 Upa

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो।

0: माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है ए आर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। You've heard this song इन रावण, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। जरा सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोगे है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें आज कहां हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कमबैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वार्मथ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कंपीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नंबर टू।

मशरूका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बार हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है, और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th week at number 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक होने वाला है, अ स्पेशल गाना स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से पूरे 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अनूप जैन की आवाज में उनका गाना अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हो रही है, गाने का नाम है साड़ी सुन, हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। इस गाने ने डेब्यू किया सीधा ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन नंबर 10, देन साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे लोग

0: ऑब्वियसली जनता को गाना तो ये पसंद आ रहा है, इस गाने से ज्यादा उनको गाने की कास्टिंग पसंद आ रही है। हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद दीप क्लेयर उनके लिरिक्स। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। नई नवेली एंट्री सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJ कनिका। कोई गाना शेयर करना हो, किस्सा कहानी कुछ भी बताना हो, @RJ कनिका और इंस्टाग्राम पर आके क्विकली हिट मी अप। गाने शेयर करने से ज्यादा आपके सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हर हफ्ते एटलीस्ट 10 लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार ये गाना नंबर 9 पे क्यों था, ये तो नंबर 4 पे होना चाहिए था या ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए। तो आई वांट टू क्लियर इट वंस एंड अगेन दैट ये गानों की रैंकिंग मैं या मिर्ची बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं, ये आप ही लोग डिसाइड करते हैं। आप ही जो प्यार देते हैं इन गानों को, हमारी टीम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देख के, आप कितनी बार सुन रहे हैं, आपके लाइक शेयर प्लेज को एनालाइज करके इन गानों की रैंकिंग बनती है। तो अल्टीमेटली यू आर द वन जो ये काउंटडाउन डिसाइड करते हैं। हर हफ्ते गाने आते हैं और गाने जाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनका कोई ना कोई टेक अवे फैक्टर हमारे दिल में रह जाता है। कभी वो सिंगर की आवाज होती है, कभी वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मुझे इंट्रो म्यूजिक लगता है कि पहले नोट से ही अंदाजा हो गया कि गाना कौन सा है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज। मैं आपको एक गाने का आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। गाना भी बहुत आइकॉनिक है, सुन के बताओ कौन से वाला गाना है।

0: हाँ वही वाला गाना है जो आपको लग रहा है, लेफ्ट राइट वालों को नहीं, एट आरजे कनेको ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। शो पर आगे बढ़ते हो, ये पूरा गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी इन आर सेगमेंट कॉल्ड कैसेट क्लासिक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 6 6 6 6

0: आदित्य रिखारी की आवाज अलॉन्ग विद कुटले खां रावटोर का म्यूजिक, गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, पूरे 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले एमसी स्क्वायर राधिका भिडे विकेट सनी का लॉन्ग वे फ्रॉम होम वॉज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके बताओ। इट्स टाइम फॉर अवर फेवरेट पार्ट ऑफ द शो। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारा कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

यूफोरिया द बैंड का मायरी एंड आपके मैसेजेस प्यार ने मेरा और अश्काय का तो दिन बना दिया। इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है इस गाने के बाद दैट आज वो गाना पिक करना कि हम कौन सा प्ले करने वाले हैं वाज अ डिफिकल्ट चॉइस एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू प्ले दिस वीक इज The one and only तेरा मेरा प्यार by कुमार सानू। ये गाना 2002 में रिलीज हुआ था एंड आज भी ऑलमोस्ट 24 साल बाद जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो इट स्टिल गिव्स मी दैट रश ऑफ फर्स्ट लव, पहली मुलाकात। आई स्वेयर एवरी टाइम आई यूज्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग मैं ना अपने आप में ब्लश कर रही होती थी कि बस कोई मेरे लिए ही गा रहा है ये गाना कि स्टॉप इट। एंड टिल डेट दिस सॉन्ग मेक्स मी फील लाइक दैट। This song gave us Nimrat Kaur, one of her earliest appearances, and that pink top that she's wearing in the video, मैंने अपनी मम्मी को इतना तंग किया था, ऐसा ही टॉप खरीदना है मुझे। What I love about this song is that there is love. कोई ऐसा अमीर बड़ी गाड़ी से निकलने वाला हीरो नहीं है, कोई ऐसे फैंसी लोकेशंस नहीं है, एक मूवी थिएटर है, so first eye contact, बस दो लोग, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, दोस्त चिढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग जो मेरे और आपके साथ कॉलेज में हुआ है या हम चाहते थे हुए, एंड इस सब को एनकैप्सुलेट करती है कुमार सानू की आवाज, व्हिच इज जस्ट नॉस्टैल्जिया का पीक। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए टू थिंक अबाउट योर ओल्ड क्रशेस दिस वीक ऑन कैसेट क्लासिक। दिस इज तेरा मेरा प्यार ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Dude, I almost feel embarrassed the way this song makes me blush. क्यों मतलब मेरे लिए कोई नहीं गा रहा है बट है ऐसा ही है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम ही है ये कुमार सानू की आवाज में दैट वॉज तेरा मेरा प्यार अ 2002 सॉन्ग ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक जितने सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया मैं नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दिस सॉन्ग अगेन एट RJ करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर आओ जो गाना आपको आज भी ऐसे गिडी गिडी फील कराता है फ्रॉम द 90s एंड 2000s अ इंडी पॉप सॉन्ग मुझे और अश्काय को आकर बताओ ऑन एट RJ कनिका एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक Now back to the countdown, अगले वाले गाने की तरफ संजू राठौर is back and how this time with Bangles. पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके Bangles is playing right next for you on गाना नंबर 5. You are listening to गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, enjoy.
1: Number 5.

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट। गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची।

0: दिलजीत दोसांझ एंड सिया की आवाज, डेविड गेटा का प्रोडक्शन, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन तीन आर्टिस्ट का नाम एक सांस में लूंगी, बट दैट इज 2026 का म्यूजिक सीन फॉर अस।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Karenga ke saath, this is the Gaana Indie Top 10. Only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jaye, mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Yahan par hum aane wale gaano ko discuss karte hain. Kaun naye collaborations ho rahe hain, kiska gaana hua countdown se out, ya kaun sa gaana ho sakta hai in. गाना नंबर 4 पे हमने दिलजीत एंड सिया का गाना सुना रांझा, विच इज सच एन आइकॉनिक कोलैबोरेशन। इंडियन इंडी पॉप में भी हमने ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोलैब्स देखे हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट डिवाइन करण औजला का स्ट्रीट ड्रीम्स, देयर इज बादशाह दिलजीत दोसांझ, बट देयर इज वन कोलैब जिसके ऊपर मैं आज एक बड़ी वाली स्पॉटलाइट मारना चाहती हूँ। इट्स बाय दीज टू इनक्रेडिबल आर्टिस्ट कॉल अकासा एंड आस्था गिल। गाने का नाम है नागिन एंड इट वाज सच अ रेजर इन 2019। नागिन में अकासा एंड आस्था दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लेकर आती हैं। कोई किसी को ओवरशैडो नहीं कर रहा है, बल्कि वो गाने में इतने मजे कर रही हैं दैट हमें भी सुन के मजे आते हैं। इंडिविजुअली आस्था गिल अप टू दैट पॉइंट वाज नोन फॉर दिस सॉन्ग। On the other hand, Akasa is such a versatile artist. वो high energy, intensity वाले गाने भी गा सकती हैं and बहुत प्यारे love songs like this one. And ये दोनों iconic artist आती हैं to create Nagin, which I absolutely love. Even 2019 से 2026 तक I cannot name a lot of female duo pop songs. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। Here's me putting it out in the universe. आस्था एंड अकासा, we need a new song from you. This is Nagin on our Gaana Spotlight only on Gaana Indie Top 10. बदी का नाम है कनिका। Enjoy.

पॉप कल्चर मोमेंट है ये गाना, सुन के ऐसे नॉस्टैल्जिया भी लग रहा है एंड बहुत नया भी है। आज तक की लकाजा की आवाज में दैट वाज नागिन। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो। 2 साल पहले सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल, द टू लीडिंग पॉप स्टार्स का एक गाना आया था, दे कोलैबोरेटेड टुगेदर ऑन अ सॉन्ग। गाने का नाम मुझे आके बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ once again with his song Dealer, 14 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक position ऊपर जम करके Dealer is this week on Gaana number 3। You're listening to Gaana Indie Top 10, बंदी का नाम है कनिका। Enjoy। Number 3।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाएं, कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है या किसी गाने के बारे में कुछ सवाल है, होते हैं यार, अंटशंट आते हैं पर मजे आते हैं मुझे, @RJKanika पर आओ बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट बिफोर दैट लेट्स डू अ राउंड अप राइट फ्रॉम द टॉप। अनूप जैन का अर्ज किया है वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: नई नवेली एंट्री हर्ष नुस्सी का साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 8। एमसी स्क्वायर का लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन गाना नंबर 7। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 6। संजू राठौर का बैंग गर्ल्स ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत येट अगेन विद डीलर ऑन गाना नंबर 3। द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक मिट्टा रोर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा कंपोज्ड बाय मिट्टा रोर दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक द ब्रेक थ्रू हरियाणवी ट्रैक। गाने का नाम है बैरन बाय बंजारे। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके बैरन इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। शीशा एंड बैरन दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा।

साथ मिर्ची इट्स हॉट।

देखो अलार्म क्लॉक से उठने वाले लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, लेकिन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें उठाती है ना, वो जल्दी से उठ जाते हैं। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, जो कि अभी अभी शुरू हुआ है। ये शो तुम्हारा डेली का मॉर्निंग मूड बूस्टर शॉट की तरह है। ऑफ कोर्स आगे आने वाले हैं ढेर सारे गॉसिप गपशप न्यूज अपडेट एंड मच मोर। एंड ऑफ कोर्स अभी अगर फिलहाल तुम घर में अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हो, कोई ऑफिस के लिए जीपीएस से ज्यादा अपनी लाइफ को रिकैलकुलेट कर रहा है, या फिर किसी का बच्चा ऑलरेडी पूछ चुका होगा कि मॉम वेयर आर माई शूज, जो कुछ भी कर रहे हो अगले कुछ घंटों तक मुझे अपने साथ चिपकाए रखो। मेरा नाम ऑफ कोर्स प्रिसला है और आज का लाइफ का मांत्रा है कि दोस्ती अगर पक्की पक्की करनी है तो सबसे पहले खुद से करो, बिकॉज इफ यू डोंट लव योरसेल्फ देन यू वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द पीपल यू लव। फिलहाल के लिए मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करती हूँ ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। फटाफट से जाकर मुझे फॉलो कर लो, मुझे कनेक्ट कर लो। मिर्ची प्रिस इज माई नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो वाला टाइम जहाँ पर हम करते हैं टाइम ट्रैवलिंग। सबसे पहले चलते हैं 1863 में, जब बैटल ऑफ गेटिसबर्ग का फाइनल डे हुआ था। यूनियन आर्मी ने जीत हासिल की और अमेरिका सिविल वॉर का पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया। फिर आया 1962, अल्जीरिया ने लगभग एक डेकेड के स्ट्रगल के बाद फ्रांस से इंडिपेंडेंस ऑफिशियली सेलिब्रेट की। लेकिन हर डेट सिर्फ सेलिब्रेशन की नहीं होती है। 1988 में ईरान एयर फ्लाइट 655 को गलती से शूट डाउन कर दिया गया था, जिसमें 290 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और हम इंडियंस के लिए 1999 कारगिल वॉर के दौरान कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने खालूबार की स्ट्रेटेजिक पोस्ट कैप्चर करते हुए अपनी जान देश के नाम कर दी। उनकी ब्रेवरी सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि सालों तक जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन है। And that's it for मिर्ची का टाइम ट्रैवलिंग with me प्रिसिला। मिर्ची मॉर्निंग्स पर तो मेरे साथ बने हुए हो, फटाफट से मुझे फॉलो कर लो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल एम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मैं तो उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा वे कजरा मेरे अंदर हुंदी शूशा शूशा हर वेले हंसा कवा हूँ।

0: फुटबॉल और लाइफ में एक चीज तो कॉमन है, जब तक रेफरी फाइनल विसल ना बजा दे तब तक गेम मस्ट गो ऑन। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, गुड मॉर्निंग टू यू। और अब पता कर दे फीफा में क्या हुआ।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: सबसे पहले पोर्टुगल वर्सेस क्रोएशिया, यार क्या ही कमबैक था। क्रोएशिया ने पहले लीड ली और फिर पोर्टुगल की कॉफी थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी, लेकिन फिर आई क्रिस्टियानो रोनाल्डो द GOAT, जिन्होंने 68th मिनट में पेनल्टी कन्वर्ट करके हिस्ट्री बना दी, अपना पहला एवर फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल। और जब सब एक्स्ट्रा टाइम का पॉपकॉर्न खा रहे थे तो गोंसालो रेमोस ने 94th मिनट में विनर ठोक दिया। पोर्टुगल जीता 2-1 और अब नेक्स्ट स्टॉप है स्पेन। उन्होंने तो ऑस्ट्रिया को बिल्कुल बफरिंग का चांस ही नहीं दिया, 3-0 की सॉलिड विक्ट्री। मिगेल ओयार्ज़बाल का ब्रिलियंट डबल, पेड्रो पोरो का गोल, और सबसे जबरदस्त बात, स्पेन ने नॉकआउट मैच जीता है पहली बार 2010 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद। कॉन्फिडेंस लेवल तो 3000 पहुंच गया होगा। अब बस इमेजिन करो पोर्टुगल वर्सेस स्पेन, यानी कि रोनाल्डो वर्सेस स्पेन। नेबर्स भी है, राइवल्स भी है, और फुटबॉल फैंस के लिए फुल फैमिली साइज एंटरटेनमेंट भी है। पॉपकॉर्न रेडी रखना, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: हाय,
1: आज का वेदर इतना ज्यादा ड्रामेटिक है कि एसी को फुल टाइम करना पड़ रहा है। इधर मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब पता करते हैं वेदर का हालचाल क्या है। फिलहाल टेम्परेचर है 82 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फील हो रहा है 83 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मर्क्यूरी भी फुल बढ़ने वाला है, एकदम जैसे बॉलीवुड हीरो का प्रोग्रेस होता है बॉलीवुड फिल्म्स में। हाई जा सकता है आज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, लेकिन फील हो सकता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी कि ऑफिशियली सेंचुरी तो मार ही ली है वेदर ने। गुड न्यूज ये है कि रेन का कोई टेंशन नहीं आज, ना पिछले 24 घंटों में बरसात हुई ना ही अगले 24 घंटों में बरसात होने वाली है, तो अम्ब्रेला आज भी आराम से अपनी वेकेशन मोड में रह सकता है। आज रात भी स्काईज जो है वो क्लियर रहने वाले हैं और सुबह तक वेदर जो है मोस्टली साफ ही रहने वाला है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात चल रही है, वो ये कि एक्सट्रीम हीट वार्निंग और एयर क्वालिटी अलर्ट दोनों एक्टिव हैं स्टिल। इसीलिए अगर बाहर जाना जरूरी हो तभी बाहर जाना, और अगर जाओगे तो एयर के प्लेयर बनकर जाओ, सनस्क्रीन लगाओ और खुद को हाइड्रेटेड रखो, यानी ढेर सारा पानी पियो। और अगर पॉसिबल हो तो आफ्टरनून की धूप को गोस्ट कर दो, घर में बैठो एसी वेसी चलाकर, सन भी कभी कभी तुम्हें ढूंढना चाहिए, राइट। और अभी अगर तुम ढूंढ रहे हो मेरे सोशल्स तो एक्स पर और इंस्टा पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग। जरा वो टाइम आ चुका है जहां पर मैं देती हूँ तुम्हें अपडेट्स अराउंड द वर्ल्ड से। सबसे पहले चाइना ने एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोज किया है जो चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा। इस प्रपोजल पर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की बीजिंग विजिट के दौरान बात हुई। अगर प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो बे ऑफ बंगाल रीजन में ट्रेड और कनेक्टिविटी पर इसका असर हो सकता है। इस डिवेलपमेंट को साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है और इस पर अलग अलग देशों के अपने व्यू पॉइंट्स हैं। हम फिलहाल और अपडेट्स का वेट करेंगे। और अगर तुम टेलीग्राम, सिग्नल या व्हाट्सएप यूज करते हो तो ये अपडेट तुम्हारे लिए है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन अथॉरिटीज ने यूजर नेम फीचर को लेकर टेलीग्राम और सिग्नल से सेफगार्ड्स और इम्पर्सनेशन प्रोटेक्शन के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा है। इससे पहले व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को भी नोटिस भेजा गया था। And now from the world of entertainment, Taylor Swift और Travis Kelce को लेकर reports आ रही हैं कि शायद दोनों ने private ceremony में शादी already कर ली है और New York में grand celebrations की तैयारी चल रही है। Official confirmation अभी तक नहीं आया है तो फिलहाल इस update को rumor mill with a disclaimer समझिए। लेकिन सोशल मीडिया डिटेक्टिव ने ऑलरेडी FBI को कंपटीशन दे दिया है। दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर कैट 3 विद मी प्रिसला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मॉर्निंग में देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। आंटी डायरेक्टली फ्रॉम बॉलीवुड इज दैट मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी करने वाले हैं। दिस इज आमिर खान थर्ड वेडिंग और बॉलीवुड स्टाइल में डेस्टिनेशन वेडिंग भी नहीं होने वाली है बल्कि एक छोटी सी इंटीमेट सेरेमनी है घर पर। डाबर सिर्फ और सिर्फ फैमिली और बचपन के क्लोज फ्रेंड्स इन्वाइटेड है। आमिर ने सबसे पहले एक बात कही थी कि हमें अपनी दुआओं में याद रखना और ब्लेसिंग्स देना, विच इज प्रीटी सिंपल एंड क्लासिक एंड डायरेक्टली दिल से, राइट? मुझे लगता है कभी कभी ना बेस्ट सेलिब्रेशंस वो होते हैं जहां पर गेस्ट से ज्यादा इमोशंस और लव होता है। एंड नाउ दैट यू आर थिंकिंग अबाउट लव एंड इमोशंस, सो लेट मी रिमाइंड यू कि आरके जूल्स पर एक मस्त सा ऑफर चल रहा है। बस स्टोर को विजिट करो, स्क्रैच काट लो और एक्साइटिंग ऑफर्स जीतने का मौका तुम्हें मिल सकता है। एंड द

part is you don't have to purchase anything. There is no purchase required. हाँ जी, shopping की practice भी हो जाएगी और luck भी test हो जाएगा. Of course, terms and conditions applied हैं. तो इस long weekend में जाकर फटाफट से check out करो RK Jewels. मैं वो प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड ऑल्सो चेक आउट माई सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट. मिर्ची, इट्स हॉट. Authentic, original, and better than our right.

ऐसा कहते हैं बर्थडे पर ना एज नहीं काउंट करनी चाहिए बल्कि अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए. और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो मैं बोलूं तो प्रिस्टलाल तो मैं बताने वाली हूँ कि आज कौन सी सेलिब्रिटीज तुम्हारे साथ अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं. सो 3rd of July के हैप्पी बर्थडे बेबीज, मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है आपका. सबसे पहले आज है तुम्हारे साथ एक्शन के सुपर डुपर हीरो टॉम क्रूज, जो आज भी एक्शन सीन्स ऐसे करते हैं जैसे स्नैकिंग कर रहे हो. साथ साथ में हॉलीवुड से यू हैव ओलिविया मन, पैट्रिक विल्सन वो कंजोरिंग वाले, एंड साथ साथ में कॉनी नीलसन भी आज ही के दिन इस धरती पर प्रकट हुए थे. एंड आज के बर्थडे स्क्वाड में हमारे फेवरेट वोंग, मिस्टर बेनेडिक्ट वोंग, और साथ में 90 सिटकॉम लवर्स के लिए फुल हाउस से एंड्रिया बाबर यानी कि किमी गिबलर, एंड फॉर टीवी फैंस स्पेशली क्राइम थ्रिलर्स थॉमस गिब्सन एके क्रिमिनल माइंड्स और डार्मा एंड ग्रेग के मेन कैरेक्टर हु व्हेन ही वाज यंगर काइंड ऑफ लुक्ड लाइक केन डॉल. और अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे टू यू विद अ झप्पी एंड अ पप्पी. एंड साथ साथ में तो मुझे जाकर फॉलो भी कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम. यहाँ पर तुम अपने बर्थडे शाउटआउट्स भेज सकते हो, अपने केक्स भेज सकते हो, इनवाइट्स भी भेज सकते हो. I know, फिजिकल केक तो नहीं आ सकता है लेकिन पिक्चर्स तो भेज ही सकते हो. इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: lovers and jewelry wish listers, time now is for a quick gold rate update on Virchi Mornings. Mera naam hai Priscilla.
1: Jules wishes everyone happy and healthy morning. Gold rating at $4,150. $4,150 के साथ आज गोल्ड की प्राइस कल से अबाउट $100 चीपर ट्रेड कर रहे हैं. राज जोल्स के साथ इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करें. वो खूबसूरत सा तोहफा 22 कैरेट गोल्ड चेन्स, गोल्ड ब्रेसलेट्स, प्लैटिनम चेन्स, प्लैटिनम बैंड्स, प्लैटिनम मेंस कफ फादर्स डे की सिलेक्शन के लिए घर लेके जाएं और 0% इंटरेस्ट पे 0 डाउन पेमेंट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें और 9 किश्तों में पैसे दें. आइए फादर्स डे की सेलिब्रेशन में राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
0: There you go, your sparkle report for the day is here. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
2: आंखों ही आंखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़, ओए आंखों ही आंखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ओए कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ, ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़.

गुड मॉर्निंग मैं मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची आवर का 3 ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के विजिट के दौरान एआई पावर्ड थियोडोर रूजवेल्ट रिक्रिएशन के साथ इंटरेक्शन किया. कॉन्वर्सेशन में पनामा कैनाल भी डिस्कस हुआ, जिसने फिर से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को लेकर पुरानी डिबेट को स्पॉटलाइट में ला दिया है. एंड नंबर टू पर इंडिया में अमरनाथ यात्रा ऑफिशियली शुरू हो चुकी है. पहले बैचेस ऑफ पिलग्रिम्स बालताल और ननवान बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गए हैं. ये 57 डेज की यात्रा 28 अगस्त तक चलने वाली है और अथॉरिटीज ने पिलग्रिम्स की सेफ्टी और स्मूथ अरेंजमेंट्स के लिए एक्सटेंसिव प्रेपरेशंस की हैं. जो भी यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें सेफ ट्रैवल्स एंड बेस्ट विशेस. एंड फाइनली राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट केस में अक्यूज्ड लवकुश मिश्रा की वाइफ को अलेजेड अनऑथराइज्ड हाउस कंस्ट्रक्शन के संबंध में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस इशू किया है. उन्हें अपना रिस्पांस देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. मैटर लीगल प्रोसेस में है और आगे की प्रोसीडिंग्स अथॉरिटी के थ्रू ही होने वाली है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसला. मुझसे कनेक्ट करने के लिए मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: It's hot. Mirchi, it's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. जरा बारी आ चुकी है कि पता करें हम सितारे क्या कह रहे हैं, आज हमारा दिन कैसा जाने वाला है.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी मेष राशि, आज स्पीड कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा रखो. सब तुम्हारी पेस मैच नहीं कर सकते एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके. कभी कभी सोलो फ्लाइट ही स्मूथ लैंडिंग कराती है. लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी वृषभ राशि, क्विक डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं. अगर बाद में थोड़ा सा डाउट आए तो रिलैक्स करने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. लकी कलर फॉर यू इज स्टील. लकी नंबर इज 8. जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, बिग चेंजेस आर नॉकिंग, दरवाजा खोल दो. तुम ऑलरेडी जानते हो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस तुम्हें लेने की देर है. लकी कलर इज एम्बर. लकी नंबर इज 29. कैंसर यानी कर्क राशि, जो इशू तुम पोस्टपोन करते जा रहे हो उसका रिमाइंड मी टुमारो बटन आज एक्सपायर हो गया है. फिनिश इट या फिर आगे बढ़ना पड़ेगा. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 5. लियो यानी कि सिंह राशि, थोड़ी सी ईगो साइड पर रखो और थोड़ी सी स्माइल फेस पर रखो. एक कॉन्वर्सेशन बड़ी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को गुड बाय बोल सकती है. यू हैव टू स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन. लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर. लकी नंबर इज 31. वर्गो यानी कन्या राशि, एक गोल को चूज करो और उसके पीछे लग जाओ हाथ धोकर. स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही माना जाता है. लकी कलर फॉर यू इज ग्रीन. लकी नंबर इज 29. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन पार्ट 1. पार्ट 2 लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में. तब तक तुम सुनो ये मिर्ची दार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसला. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन.

0: Hey, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. वेलकम बैक. लेट्स फाइंड आउट आज हमारे स्टार्स क्या कह रहे हैं.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: लिब्रा यानी तुला राशि, करियर को लेकर नई डायरेक्शन मिल सकती है. अपने कंफर्ट जोन से कुछ पैर बाहर निकालो तभी तो आगे बढ़ पाओगे. लकी कलर इज पिंक. लकी नंबर इज 22. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज एक बोरिंग सा टास्क तुम्हारा वेट कर रहा है जिसे करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन करना पड़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, मतलब तभी तो आगे बढ़ोगे. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक. लकी नंबर इज 11. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, माइंड को रिफ्रेश करो, नए आइडियाज की एंट्री होने दो यार. ओल्ड थिंकिंग को थोड़ा सा अनइंस्टॉल करो और नई थिंकिंग को थोड़ा सा इंस्टॉल करो, समझे. लकी कलर फॉर यू इज ब्लू. लकी नंबर इज 36. केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, बिजनेस या मनी को लेकर पॉजिटिविटी रखो अपने दिमाग में. कॉन्फिडेंस भी एक इन्वेस्टमेंट होता है और इसका रिटर्न काफी अच्छा मिलता है अगर लगातार इसमें इन्वेस्ट करते रहो तो. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक. लकी नंबर इज 4. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कभी कभी गोल बड़ा नहीं होता बल्कि टाइमिंग गलत हो जाती है. प्लान को थोड़ा सा ट्वीक करो. सपने बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके अराउंड स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है. लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन. लकी नंबर इज 27. एंड फाइनली पाइसीज यानी कि मीन राशि, जो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं उन्हें रिप्लाई वर्ड से नहीं बल्कि अपने कर्मों से दो. आज तुम्हारी एनर्जी फुल मैं ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी वाली है. उस एनर्जी को बरकरार रखो और अपना वीकेंड और ऑसम बना लो. लकी कलर फॉर यू इज कोरल. लकी नंबर इज 19. And that's the end of Rashi Zone Part Dvitiya. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. Of course, this is Mirchi Mornings. Connect करना चाहते हो मुझसे तो Insta और X पर मेरा handle है Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

पता है, लाइफ में सबसे अच्छा प्लेलिस्ट वो होता है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब टाइम भी ना खत्म हो गया है, यानी कि आज के शो का टाइम खत्म हो चुका है। ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं खत्म हो जाता है हमारी सैलरीज की तरह। जाने से पहले तुम्हें एक बात बताकर जाती हूँ कि फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अल्फा को 1.5 स्टार्स दिए हैं आउट ऑफ 5, और उन्होंने अपने रिव्यू में इसे YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे वीक फिल्म बताया है। उनका कहना है कि फ्रेंचाइज को फिर से वो इमोशनल कनेक्ट और रिलेटेबिलिटी लानी होगी जिसने ऑडियंसेस को पहले अट्रैक्ट किया था। उन्होंने ये भी लिखा है कि आलिया भट्ट ने पूरी मेहनत की है, लेकिन उनके हिसाब से वो इस पर्टिकुलर रोल के लिए मिसकास्ट लगी। अब देखो, रिव्यूज भी ट्रेलर्स की तरह होते हैं, एक ओपिनियन फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता। कोई फिल्म किसी को ब्लॉकबस्टर लगती है, कोई फिल्म किसी को पॉपकॉर्न ब्रेक लगती है, या फिर किसी को वर्थ वॉचिंग भी नहीं लगती है। इसीलिए अगर तुम देखने का प्लान बना रहे हो तो अकॉर्डिंग टू मी अपना खुद का रिव्यू लेकर जाना चाहिए, मतलब मूवी देखने के बाद अपना खुद का ओपिनियन बनाना चाहिए। एंड आई फील हर मूवी इज अ वन टाइम वॉच। वैसे तुम्हारे वीकेंड पे करने को कुछ नहीं है तो मैंने प्लान तो सेट कर दिया तुम्हारा। अब जाने के पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम मुझे फॉलो कर लो फटाफट से। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय है, हम लोग तुमसे मंडे को सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Avicii. It's Hot.

0: 90s का बचपन बड़ा मासूम था और उसके पीछे का रीजन आओ मैं आपको बताती हूँ।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. आजकल तो हमने देखा ही है हमारे आसपास जितने भी बच्चे हैं, उन सबको वो सारी बातें करनी आती हैं, जो बड़े भी नहीं कर सकते यार। और जितने भी कसवर्ड्स हैं, वो जितना बड़ों को आते हैं, उतना ही बच्चों को भी आते हैं। लेकिन हम 90s kids सिर्फ इतना कहकर रह जाते थे कि जो बोलता है ना वही होता है, और हम एक दूसरे को छेड़ने के लिए कोई गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, सही वर्ड को गलत करके बोला करते थे। बस जिसको छेड़ना हो उसके नाम के पीछे डी लगा दो और फिर देखो अगले का क्या हाल होता है। जब भी कोई मुझे साराड़ी कहकर बोलता था ना तो मेरा तो खून खौल उठता था। एंड सेम इज विद माय कजिन्स, हां जैसे को तैसा होता था। मैं तो अपनी बहनों को छेड़ने के लिए पता है क्या किया करती थी, आई यूज टू पिक अप दी एटलस और मैं उसमें से ना नई नई जगहों के नाम देखकर बोला करती थी, और उन लोगों को लगता था ना कि मैंने कुछ बहुत ही गलत बोल दिया है उन लोगों को, और वो इतना चिढ़ जाती थी ना, इतना चिढ़ जाती थी कि लड़ाई के अंदर मेरी जीत होती थी। हाय वो बचपन और हाय वो मासूमियत, जो अब कितनी भी दौलत शोहरत ले लो और दे दो ना वापस नहीं आने वाले। चलो जी अभी हम वहीं चलते हैं जहां पर ये मासूमियत पनपा करती थी। 90 के दौर में 90s के गियर में इस गाड़ी को डालती हूँ जिसका नाम है मिड डे मोहब्बत, और आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक रुपए की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और ये रमेश बाबू आज का जमाना है जिसको एक रुपए की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हम मिलेनियल से पूछो कि एक जमाने में एक रुपए हमारे लिए क्या हुआ करते थे। ये
2: है 90 की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड यार, आज के जमाने में एक रुपए तो चिल्लड़ के काम में भी नहीं आती है। लेकिन यार, बचपन में एक रुपए बहुत मायने रखा करते थे। जब कभी जेब में कहीं इधर उधर से मिल जाया करते थे तो दिल खुश हो जाता था और अपने आप को ही हम कह दिया करते थे कि आज तो हम अमीर हैं। बोलो क्या मांगना है। जाते थे किराने की दुकान पर और वहां से कोई ना कोई बढ़िया सी चीज उठा कर लेकर आते थे। तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना आज उस जमाने के एक रुपए की गिनती की जाए। एक रुपए में मिलती थी पेप्सी और होता था उससे मेरा भाई सेक्सी। वो एक रुपए की पेप्सी और आज 150 रुपए की कोई आइसक्रीम खिला लो, जमीन आसमान का फर्क है यार उन दोनों के ही स्वाद में। वो एक रुपए की पेप्सी एक पन्नी में आया करती थी, लंबी सी हुआ करती थी और ऑरेंज वाला फ्लेवर सबसे ज्यादा बिका करता था। गर्मी हो तो भैया ऐश ही ऐश और सर्दी हो तो छुप छुप के हम खा लिया करते थे। लेकिन कुछ भी कहो, वो एक रुपए की पेप्सी हमारी जिंदगी से कभी ना जाती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि स्कूल छूट गया और वो एक रुपए की पेप्सी भी चली गई। सिर्फ और सिर्फ यही बात रह गई हमारे साथ कि एक रुपए की पेप्सी तेरा भाई सेक्सी। एक रुपए में हम और क्या क्या खरीद कर दुनिया जीत लिया करते थे बताऊंगी आपको आज मिड डे मोहब्बत पर। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Sara zamana, sara ka deewana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
3: कितना माल लाए हो? एक रुपया रख दो टेबल पर और पलट कर सीधा दरवाजे से बाहर निकल जाना. पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. ये थी कीमत एक रुपए की एक जमाने में.
4: ये है 90 की गप्पे.
3: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड वेल, आज उस टाइम को याद कर रही हूँ यार, जब एक रुपए की भी अहमियत हुआ करती थी. आज तो 1,000 भी कहाँ जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता है. लेकिन जब कभी 1 रुपए हमारी जेब में से, बैग में से निकल जाया करते थे, या कोई बड़ा हमें दे दिया करता था, तो ऐसा लगता था कि ओहो, आज तो दुनिया कदमों में है, आज तो हम माला माल. और तब दिमाग दौड़ना शुरू होता था कि क्या लें यार, क्या लें, क्योंकि 1 रुपए में बॉस ऑप्शन तो बहुत हुआ करते थे. और याद है, 1 रुपए में हम वो लट्टू ले लिया करते थे, या तो फिर कंचे ले लिया करते थे खेलने के लिए. वो 1 रुपए के लट्टू के पीछे पूरी दुनिया लट्टू हुआ करती थी, और वो कंचे, ओए होए, क्या खूबसूरत हुआ करते थे यार. आई स्वेयर, मुझे आज तक भी ना वो कंचे प्रॉपर्ली खेलने नहीं आए थे. लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं, मेरे पास मेरे बचपन की यादें इंटैक्ट है. चामिस की एक डिब्बी के अंदर खूब सारे कंचे रखे हुए. 1 रुपए में छोटा वाला कंचा आता था और 2 रुपए में बड़ा वाला कंचा आता था. और बस जी, जब कभी हमें 1 रुपए मिल जाते थे तो हम तरीके तरीके के कंचे उठाकर लेकर आया करते थे. लोगों ने तो स्टैम्प कलेक्शन किए हैं, कॉइन कलेक्शन किए हैं, मैंने कंचा कलेक्शन किया है. इतने रंग रंग के कंचे हुआ करते थे ना कि उस कंचे के अंदर ऐसा लगता था जैसे कि पूरा का पूरा यूनिवर्स दिख रहा हो. ऐसा लगता था कि गैलेक्सीज हैं, तारे हैं, सितारे हैं, और एक अजीब सा एक डिजाइन हुआ करता था, विच यूज टू फील लाइक, आज हम बोल सकते हैं, द ईविल आई, क्योंकि उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि इट्स एन ईविल आई. लेकिन हाँ, वो ईविल आई टाइप एक डिजाइन भी हुआ करता था जो कलर बदला करता था. कभी येलो होता था, कभी वो ब्लू कलर का हुआ करता था, कभी वो व्हाइट कलर का हुआ करता था. एंड दैट यूज टू बी द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कंचास. बट कुछ भी कहो यार, ये कंचे होते कितने खूबसूरत थे. मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इनको एस्थेटिक वैल्यू के लिए रखा था, क्योंकि खेलना आता नहीं था और अक्सर मैं कंचे तोड़ दिया करती थी. इसीलिए बेहतर यही होता था कि अगर 1 रुपए मैंने किसी कंचे में इन्वेस्ट किया है ना, तो उसे तोड़कर अपना नुकसान न करो, संभाल के ही रख लो. कमिंग अप मोर ऑन उस जमाने का 1 रुपया. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

चल चल चल चल चल चल झपटाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बांटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज तो यार अगर जेब में से 1,000-2,000 रुपए भी निकल जाते हैं ना, तो दिमाग में एक ही इनसिक्योरिटी आती है कि अरे यार निकले तो हैं, मगर पता है खर्च हो जाएंगे। लेकिन बचपन में जब कभी हमारी जेब से एक रुपया निकला करता था ना, तो ये इनसिक्योरिटी नहीं, एक्साइटमेंट आया करता था कि ओ माय गॉड, एक रुपया मिला है, चलो इससे कुछ लेकर आते हैं।
2: ये है 90 की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस एक रुपए की कीमत हम बहुत अच्छी तरीके से जानते थे रमेश बाबू। तभी तो जब एक रुपया हमारी जेब में से निकलता था तो हम सीधा दौड़ लगाया करते थे दुकान की तरफ कि अब देखो बेटे इससे हम क्या क्या खरीद लेते हैं। मेरे घर के पास में ना एक छोटी दुकान हुआ करती थी जिसपे चिज्जी नामक चीजें मिला करती थी। चिज्जी, आई एम श्योर आपको याद होगा कि बचपन में जो कुछ भी हम 1 या 2 रुपए की चीजें खरीदा करते थे उसे चिज्जी कहा करते थे। और जहाँ मेरे पास 1 रुपए निकल आते थे ना, मैं दौड़ती थी सीधे छोटी दुकान की तरफ कि यार अब 1 रुपया मिल गया, इसे खर्च करना तो बनता ही बनता है। और उस 1 रुपए में या तो मैं बबूल ले लिया करती थी या तो मैं बूमर ले लिया करती थी, डिपेंड करता था कि यार किसके साथ क्या मिल रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ करता था कि बिग बबूल के साथ टैटूज मिला करते थे, और वाकई में टसल बड़ा टफ हुआ करता था यार कि दोनों में से किस चीज को चूज करना है, बिग बबूल को चूज करना है या बूमर को चूज करना है। पैकिंग मुझे बिग बबूल की अच्छी लगती थी लेकिन एड मुझे बूमर का अच्छा लगता था, और बस इसी असमंजस में मैं अटक कर रह जाया करती थी। और फिर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता था कि बिग बबूल या बूमर। फिर करती थी इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी, डोंकी डाइड, फादर क्राइड, इंकी पिंकी पोंकी, जिस पे आया पोंकी वो चीज हो गई हमारी। देखा कितने मालामाल हो जाया करते थे हम उस जमाने के 1 रुपए को पाकर। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: ये दुनिया कितनी बड़ी हो गई है ना यार, और इसके साथ हम भी बड़े हो गए हैं। अब पैसों की कीमत समझ नहीं रह गए हैं। ये समझ में आने लगा है कि पैसों को बर्बाद नहीं करना है, कुछ भी खरीद के दिल को खुश नहीं करना है, इसको बचा के रखना है। लेकिन एक जमाना ऐसा था कि जब हमारे पास पैसा आता था तो बस उसी वक्त डिसाइड हो जाता था कि यार ये जो आया है ये तो जाके ही रहेगा।
0: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और वो छोटे से दिल के अंदर छोटी छोटी हमारी इच्छाएं हुआ करती थी, जिसमें अगर एक रुपए मिल जाता था ना तो वो इच्छाएं पूरी भी हो जाया करती थी। आज तो कितना ही पैसा क्यों नहीं मिल जाए, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, अनगिनत। कहते हैं ना इंसान लालची चीज है, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन बचपन वाला जो इंसान होता है ना वो बिल्कुल लालची नहीं होता है, एक रुपए में संतुष्ट हो जाता है बॉस। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि एक रुपए में एक चीज मिला करती थी जिसका नाम था आम पाचन। याद है आपको वो कलरफुल पैकेट जिसके अंदर गोलियां आती थी आम की, और जो हाजमे के लिए बड़ी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन हम इसे हाजमे के लिए नहीं खाया करते थे, हम इसे चटखारे के लिए खाया करते थे। तो ये जरूरी नहीं होता था कि इसे हम लंच या डिनर करके ही खाएं, क्योंकि यही अगर आज हम होते तो हम इसे बचाते अपने लंच और डिनर के लिए। लेकिन बचपन में हमने कुछ खाया है या नहीं खाया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, हम ये आम पाचन जरूर खा लिया करते थे। क्योंकि क्या है ना कि इससे हमारी लाइफ में बड़ा जबरदस्त टैंग आता था, और एक आवाज आया करती थी इसको खाने के बाद। वो आवाज कुछ ऐसी होती थी, क्योंकि आम पाचन की खटास जो है ना वो दांतों के अंदर कुछ कर जाया करती थी। वो खट्टा मीठा स्वाद जो हुआ करता था ना इसका, ओए होए, आज जो कॉफी कितनी दे पाती है ना वो आम पाचन ने अपने जमाने में दे दिया था। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर 1 रुपए वाली चीजें विद मी सारा ऑन मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: देखो यार, बचपन से मुझे रेल देखने का बड़ा शौक हुआ करता था, लेकिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे होने का एक अलग ही किक था। और वो किक था वो जो एक रंग बिरंगी सी मशीन नहीं हुआ करती थी वेट वाली, वो
0: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और भले ही आज बेचारा एक रुपया कुछ नहीं कर पाता हमारे लिए, वो ना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बूढ़े दादाजी जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुआएं देते हैं हमको और दूर से बैठ के देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कितने आगे बढ़ गए हैं। लेकिन यही एक रुपया कभी हमारी आबादी का रीजन हुआ करता था, हमारी खुशी का रीजन हुआ करता था। और ये एक रुपये से हमें ये खुशी मिला करती थी जब भी कभी हम किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हुआ करते थे कि हमने एक रुपये का सिक्का डाला उस मशीन के अंदर, तो वो मशीन हमें हमारा वजन बता दिया करती थी। आई यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड अबाउट दैट मशीन यार। और कभी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर अगर वो मशीन काम नहीं कर रही होती थी ना, तो मेरा तो दिल ही टूट जाता था यार, क्योंकि एक रुपया भी चला जाता था और मशीन भी काम नहीं कर रही है। लेकिन वो फंकी सी जो मशीन थी, उसके ऊपर चढ़ने के बाद जब वो पूरा का पूरा एक टिकट निकाल के दिया करता था जो ब्राउन कलर का हुआ करता था कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर, और उसके ऊपर हमारा वजन आता था, वो मैं किसी को नहीं दिखाया करती थी। हाँ, पता नहीं क्यों बचपन में हम इतना ज्यादा कॉन्शियस थे ना अपने वेट को लेकर कि ये वाला जो टिकट था ना हमारा, ये किसी को नहीं दिखाएंगे। अगर टीटी अंकल भी बोलते ना तो उनको भी नहीं दिखाते बॉस। लेकिन हाँ, उस वजन वाले टिकट को हम बड़ा संभाल के रखा करते थे। क्या आपके पास आज भी वो टिकट रखा हुआ है कहीं संभाल के? बताना मुझे डीएम करके ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मुझे आज भी याद है जब ऐसा होता था ना कि बहुत दिनों तक साइकिल नहीं चलाते थे और साइकिल सिर्फ रखी हुई होती थी तो उसे चलाने के लिए ना 1 रुपए लगता था।
0: 90 की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हालांकि आज 1 रुपए की वो कीमत नहीं है, लेकिन एक जमाने में 1 रुपए भी अपने दम पर क्या क्या कर लिया करता था बॉस। और ये वो टाइम था बचपन का जब हमारी साइकिल जो है उसकी हालत दुरुस्त करने के लिए 1 रुपया लगता था, क्योंकि साइकिल रखे रखे अपनी हवा जो है वो खो दिया करती थी। और फिर ये होता था कि जब ऑल ऑफ अ सडन वन डे प्लान बनता था कि यार अब तो साइकिल चलानी शुरू करनी है, तो लगते थे 1 रुपए। और साइकिल को पेडल मारकर चलाते हुए नहीं लेकर जाते थे, उस पे सवार होकर नहीं जाते थे, क्योंकि हवा तो उसमें बेचारी में थी नहीं ना। तो हम भी पैदल पैदल, साइकिल भी पैदल पैदल, और दोनों साथ साथ पहुंचते थे पंक्चर वाली दुकान पर। वहां जाकर पहिए के अंदर हवा भरी जाती थी, मात्र 1 रुपए में दोनों पहियों में हवा भर जाया करती थी बॉस। और फिर साइकिल हो जाती थी एकदम खिलखिलाती और मुस्कुराती हुई। उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक बॉस। उस 1 रुपए को उस दुकान पे छोड़ने के बाद जो हम साइकिल के हवा की खुशी लेकर जाया करते थे ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए, वो नेक्स्ट लेवल थी यार। अभी भी आपसे बात करते हुए ना आई कैन इमेजिन माई सेल्फ राइडिंग माई बाइसाइकिल, और वो जो मेरे चेहरे पर खुशी मुझे नजर आ रही है ना, वो यार अब ऐसी वाली नजर नहीं आती। क्या बात है जो उस 1 रुपए में थी और आज के हमारे 1,000, 2,000, 10,000 में भी नहीं होती। कुछ तो बात थी यार उसमें, शायद बड़े उसे बरकत कहते हैं। आई थिंक सो। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जस्ट इमेजिन 1995 का साल है, जून का तपता महीना और उस तपते महीने की एक दोपहरी जहां पर आपकी जेब में है मात्र 1 रुपए और आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इस 1 रुपए में क्या लोगे?
2: 90 की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर आप सोच रहे हो पैटीज खा लेंगे, समोसा खा लेंगे, तो नहीं, वो तो 2 रुपए का आता था। बॉस, 1 रुपए में हमें रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर ना वो जो पोर्टेबल फ्रीजर्स होते थे उसमें से मिल जाता था एक पानी का पाउच या फिर एक मस्त शिकंजी। और ये सोडा शिकंजी नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मीठी शिकंजी होती थी, क्योंकि सोडा डालने के बाद तो इसका दाम बढ़ जाया करता था। बॉस, आज तो हमारे आसपास खूब सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जब कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, मतलब आपको खाने पीने की चीजों से लेकर पानी के रंग रंग की बॉटल्स मिल जाएंगी। लेकिन एक टाइम ऐसा था बॉस जब पानी मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। दूर तक चल के जाना होता था कि बस स्टैंड या स्टेशन पर वो एक दुकान जो है ना वो एकदम सही है यार, उसके ऊपर काफी सारा सामान मिलता है। अब वहां जाने का मौका मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन हाँ, ये जो पोर्टेबल फ्रीजर हुआ करते थे ना, दे यूज्ड टू बी अ सेवियर जो जगह जगह पर हमें मिल जाया करते थे। और हमें कोई शर्म नहीं आती थी यार प्लास्टिक के पाउच से पानी पीने में, क्योंकि मेरी मम्मा ना अक्सर एक बात कहती है कि अगर आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया ना तो आपको दिल से दुआएं मिलती हैं। एंड आई थिंक उस जमाने में यही हुआ करता था कि हमारे मुंह से और कुछ नहीं निकलता था सिवाय दुआओं के, कि हाय कुछ भी करो इस तपती गर्मी में पानी तो मिला और वो भी ठंडा। आज के टाइम में तो 30 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का पानी मिल जाता है, लेकिन इस टाइम में भी वो 1 रुपए वाला पानी बड़ा याद आता है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: जब प्यार किसी से होता है और तब अगर ये मैजिकल टीम उस प्यार के लिए म्यूजिक संजोता है तो मजाल है कि इस प्यार का कोई दुश्मन खड़ा हो जाए।
1: मिर्ची 90s का सेट।
2: जतिन ललित का म्यूजिक, आनंद बख्शी साहब के बोल, कुमार सानू और लता जी की आवाज ने मिलकर इस गाने में जो जादू क्रिएट किया है ना यार, मैं तो तब बच्ची थी तो ये प्यार व्यार किसी से ऑफ कोर्स होना तो था नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर याद है कि सलमान खान को इस गाने में देखकर मुझे उन पे क्रश जरूर हुआ था, बेबी क्रश यू सी। अच्छा, इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स को लेकर एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है कि जब जतिन ललित इस मूवी का म्यूजिक बना चुके थे तो उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी से मजाक में कहा कि उन्होंने तो मुंबई में बैठकर म्यूजिक बना दिया है, अपना काम कर दिया है, अब ये लोग फॉरेन लोकेशन में जाकर इस गाने को शूट करेंगे। एंड दे सेड कि कभी हमें भी अपने साथ शूट पर ले जाइए ना। एंड गेस व्हाट, रमेश जी ने इस मजाक को सीरियसली लेते हुए इन दोनों के भी टिकट कटा दिए और जब बाकी सारी टीम शूट करती थी तो ये लोग फॉरेन लोकेशन के सेट पर छुट्टियां मना रहे थे। तभी तो कहते हैं ख्वाब देखने में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। यू नेवर नो कौन सा ख्वाब आपकी दुआ करने से कब सच हो जाए। अभी के लिए तो इस गाने को मैं आपकी 90s की प्लेलिस्ट के लिए सजेस्ट करते हुए कहती हूँ कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा अगर ढूंढना है तो ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ यही खूबसूरत गाना आ रहा, यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले

Mirchi, it's hot. Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

0: किशोर कुमार के सबसे बड़े बेटे अमित कुमार, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, और उनके एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सुंदर गाने से जुड़ा एक इंसिडेंट उन्होंने एक टीवी शो पे शेयर किया था, सुनिए।
1: एक गाना था, मैं ही गाया था, रोज रोज आंखों तले। वो गाने में तीन अंतरे आशा जी की थे, टॉकिंग अबाउट 1984-85 में जीवा फिल्म रिलीज हुई थी। तो अभी हीरो जो है संजय दत्त, उसको जब मालूम पड़ा उनको कि पूरे गाने में कुछ नहीं कर रहा लड़के मंदाकिनी गायकी और मैं खड़े रहूंगा ऐसा करके, तो बोला मेरे को एक अंतरा दो। तो

0: उनके वजह से एक अंतरा आया, थर्ड अंतरा जैसे हुआ तो पंचम दा बोले ठीक है किशोर दा को फोन करो यार। तो किशोर दा का नाम सुन के डड्डू से किशोर दा क्यों, ठीक है चलो अमित को फोन करो यार। पंचम दा ने फोन किया और बाबा ने उठाया, हेलो आपका लड़का क्या कर रहा है? बोले तो मालूम नहीं सोता है वो, बोले उसको जगाए उसको गाना मिल गया। तो बाबा बोले पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ? बोले आपका बजट ही नहीं है।
1: ये बढ़िया था फिल्म मेकर्स का है, बजट है तो पिताजी को साइन कर लो, बजट नहीं है तो बेटा जी को साइन कर लो। खैर ये सब छोड़ो, ये सुंदर सा गाना सुन लेते हैं पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स
0: हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
2: अरे एक फरियादी हाजिर है,

0: पिता किशोर कुमार के साथ उनकी शुरुआती यादें। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या मेमोरीज शेयर की थी।
1: जब 3-4 साल की उम्र में मुझे पता चला, जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, के यस ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये है, अरे ये तो बम्बई है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है, छोटा सा घर है, और ये आदमी जो मैं देखता हूँ रोज गाड़ी में आता है और आधी मूछे लगा के मेकअप करके आके खाना खा के लंच टाइम चला जाता है, ये कौन है, ये कौन है। तो सोचता रहता था कौन है ये, कौन है। तो एक दिन मैंने अपने माँ से कहा कि कौन है ये आदमी, माँ ये कौन है, तेरा बाप है। ऐसा मुझे बचपन में धीरे धीरे जब होश संभाला तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ माई चाइल्डहुड, दिस इज़ माई डोमेन, यू नो, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। तो ये मुझे याद है छोटा छोटा, मतलब कि यू नो देव साहब आते थे काफ़ी पिताजी से मिलने वो उस वक्त, यू नो दीज आर थिंग्स आई रिमेम्बर।
0: वेल, अमित कुमार की कुछ और ब्यूटीफुल मेमोरीज साथ में उनकी जर्नी भी सुनेंगे यहीं पर मिर्ची पर पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और फिलहाल तो ये ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन का कॉम्पोजिशन, मूवी का नाम लव स्टोरी।

Mirchi. It's hot. Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on

0: अमित कुमार जब 8 साल के थे तो उनकी मदर रूमा गुहा और उनके फादर किशोर कुमार का डिवोर्स हो गया, तो अमित कुमार अपनी मदर के साथ कलकत्ता में रहते थे और किशोर कुमार बॉम्बे में। फिर कुछ ऐसा मैटर हो गया कि इनकी मम्मा ने इनके फादर से किशोर कुमार से इनकी शिकायत लगाई और किशोर दा को कलकत्ता आना पड़ा। वो क्या हुआ था सुनिए, एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने शेयर किया था।
1: जब मैं 17-18 साल का था कलकत्ते में, उन दिनों 1970 में मैं कलकत्ते में गली गली में गाना शुरू किया। मैंने उत्तम बाबू के जो इलाका भवानीपुर जो आज भी है, उनके वहाँ पे दुर्गा पूजा तो मैं गया था। तो उस वक्त मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग मिलके ग्रुप एमेचर म्यूजिशियंस, मैंने प्रिपेयर किए थे कुछ 5-6 गाने, बट आई हैड टू सिंग अबाउट 10 सॉन्ग्स, जिसे कहते हैं आई शेड माई इनिबिशंस, स्टेज फ्राइड निकल गया और इतना अच्छा गाया मैं। तो वो उसके बाद मैंने जो शुरू किया प्रोग्राम कलकत्ते में, तो वो पिताजी को पता चला, माँ ने फ़ोन करके कहा कि वो तो पढ़ाई लिखाई में एकदम मन नहीं है, इधर उधर घूमता फिरता है, आपके आप ही के गाने गाता है। तो पिताजी बहुत खुश हो गए, वेरी गुड वेरी गुड, मैं आता हूँ कलकत्ता।
0: वेल, किशोर दा कलकत्ता पहुंचे और अपने बेटे को बॉम्बे लेकर आ गए। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

0: अमित कुमार जब 17-18 साल के थे तो कलकत्ता में अलग अलग प्रोग्राम्स में गाने गाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बात से इनकी माँ थोड़ी सी परेशान होने लगी। उन्होंने किशोर कुमार को फोन किया बॉम्बे में कि भाई देखिए आपका बेटा तो रिलीजियस प्रोग्राम्स में भी फिल्मी गाने गाता है और आपके ही गाने गाता है, पढ़ाई लिखाई ये करता नहीं है, अब आप ही आके देखिए इसको। और किशोर दा पहुंच गए कोलकाता। फिर क्या हुआ सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: तो कलकत्ता है तो उन दिनों मेरा एक प्रोग्राम था रविंद्र सदन में। He saw the program. He came specially to see the program. तो मुझे कहा कि when you'll go on the stage, you won't get nervous, no? Because I'll be sitting in front of you. मतलब जो भाई मैं उन्होंने तो कहा मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मतलब नहीं लेकिन क्या होगा कि तुमको disturb हो जाएगा। तुम एक काम करो मेरे को सामने सीट मत देना। तो मुझे कहीं स्टेज के पीछे कहीं बैठाओ। क्योंकि सामने मैं बैठूंगा तो कोई तुम्हारा गाना सुनेगा नहीं। तो he was right. हमने वैसे ही किया, हमने उसको जहाँ से लाइटिंग होती है ना ऊपर वहाँ पे बैठा दिया। अब मैं गाना गा रहा हूँ, अब वो वहाँ से देख रहे हैं मुझे। ही इज एंजॉयिंग। आई ब्रोक द आइस, योडलिंग किया। वो इतने खुश हुए, वो मेरे माता जी से कहा कि तो वंडरफुल, बहुत अच्छा गाता है, उसको बॉम्बे भेजो।
0: तो इसी तरह लड़का बॉम्बे आ गया अपने प्लेबैक सिंगिंग के करियर की शुरुआत करने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

बोलू

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: 1970 की बात होगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जब किशोर दा को अपनी एक्स वाइफ रूमा गुहा से पता चला कि उनके बेटे अमित कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, यहाँ वहाँ प्रोग्राम्स इवेंट्स में गाने गाते फिरते हैं, किशोर दा कलकत्ता पहुँचे, अपने बेटे का एक इवेंट अटेंड किया, उनको गाता देख कर खुश हो गए और उनको बॉम्बे ले आए। वहाँ पे क्या हुआ, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: उसके बाद मुझे बॉम्बे लाए, यहाँ पे उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम रखा, डैडी किशोर एंड सनी अमित टुगेदर ऑन स्टेज, वेरी इंट्रोड्यूस्ड मी 1971। बोले देखो ये तुम्हारा पहला, मैं तुम्हें स्टेज पर प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ऐसा करना कि मैं गाना गा रहा हूँ तुम बजा रहे हो, तो मैं जैसे गाना शुरू करूंगा तुम वहां से उठ के आके मेरे को कंधे पे टैप करोगे और मैं घूमूंगा एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू। तो वो गाना था फिल्म दो चोर करके, एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें गाना था मेरी जान कहना मानो। तो वो जैसे वो गाना शुरू किया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हो गया, नहीं थी सेड मेरी जा कहना मानो, तब तक मैं आ गया, उठ के आके तुम तो ऐसा क्या दोनों घूमे, तो मैंने कहा मेरे बाप अब तुम जाओ, मुझको गाने का मौका तो दो, तूने कहा दिया करके।
0: वेल, बाप बेटे की इस जुगलबंदी का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ।

0: मॉडल पुराना लगता है।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती।
2: टीनेज में जब अमित कुमार में सिंगिंग के लक्षण दिखाई देने लगे तो किशोर दा उन्हें कलकत्ता से बॉम्बे ले आए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जब बॉम्बे ले आए तो बकायदा एक सिंगिंग इवेंट में, एक प्रोग्राम में किशोर दा ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए अमित कुमार ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
3: बॉम्बे आ गया पिताजी के साथ तो उनके फिल्मों में गाता था ही मैं। बाहर पूछते थे सब, लक्ष्मी जी प्यारे भाई तो सब पूछते थे कि वो गाता है। तो लक्ष्मी जी तो कमाल का, पिताजी को बोलते थे मैंने सुना अमित गाता है। बाबा बोला हाँ वो गाता है, मुड़की उड़की मारता है। जब बाबा मुझे बोलते लक्ष्मी ने ऐसा क्यों पूछा मुड़की उड़की मारता है, तो मुझे बोला मुझे कुछ आता ही नहीं, आई वॉज रॉ यू नो। कहते मैं तो कुछ मालूम नहीं मुझे। बोले कुछ नहीं मालूम की बात नहीं, तुमको अगर गाना सीखना है तो पहले सहगल साहब का गाना प्रैक्टिस। तो मैंने बोला सहगल साहब नेजल? बोले नहीं ऐसा नहीं है, ही वॉज अ वेरी बिग सहगल साहब भक्त। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि देखो पहले से क्रिटिसाइज नहीं करने का, पहले तुम सहगल साहब के गाने सुनो, ये 3 गाने मैं तुम्हें देता हूँ, इसको प्रैक्टिस करो। तो मुझे तब मालूम पड़ा कि इट इज नॉट इजी टू सिंग सहगल साहब सॉन्ग। तो फिर मुझे ऐसे करते करते इंटरेस्ट उन्होंने जगाया।
2: चलिए इसी बात पे इंटरेस्टिंग सा गाना सुन लेते हैं अमित कुमार की आवाज में। आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने गाना लिखा है, मूवी का नाम तेरी कसम। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
3: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम

0: अरे बांगड़ू, तो संगीत सीखेगा रे? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अर्ली 70s में जब किशोर दा को रियलाइज हुआ कि उनके बेटे में टैलेंट है, तो उसे कलकत्ता से बॉम्बे ले आए। अमित कुमार ने पहले किशोर दा की फिल्मों में गाना शुरू किया। फिर और म्यूजिक डायरेक्टर्स जब अमित कुमार के बारे में पूछताछ करने लगे, तो ये भी पूछने लगे कि क्या वो क्लासिकल गाने गा पाएगा। एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: मैंने कहा कि मैं क्लासिकल सीखूंगा एक दिन, तो वो हंसने लगे एकदम से। पिताजी के ये थे, वो भी क्लासिकल उतना मतलब वो सुनते थे क्लासिकल बचपन से बहुत। मैंने सुना कि ही यूज्ड टू गो फॉर दीज म्यूजिकल शोज आल्सो, विलायत खान साहब, बड़े गुलाम अली सब देखते थे, रविशंकर। तो उन्होंने कहा मनादा मनाडे, मनादा को फोन किया। तो मनादा को फोन करके बोला, मनादा मेरा लड़का बोलता क्लासिकल सीखा, तो वो भी हंसना शुरू कर दिया, भेज दो मेरे पास। मनादा मुझे देखते ही हंस रहे थे, तू क्लासिकल गाएगा? बोले क्यों, मैं गाने? बोले ठीक है, बट सीरियसली? बोला हाँ। तो ही अपॉइंटेड गुलाम मुस्तफा खान साहब, उनके साथ मैं 6 महीना सीखा, रिलीजियसली सीखा, लेकिन कुछ घुसा नहीं अंदर। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं बोला मैं क्या कर रहा हूँ। तो पिताजी बोल रहे थे, मैं बोला था ना कि तेरे पेशेंस है नहीं, इतना इजी नहीं है क्लासिकल। उस एज में क्या होता है ना, यू आर नॉट सीरियस।
0: तो ठीक है, फिर एक हल्का फुल्का लाइट सा गाना सुन लेते हैं यहाँ पे पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: चांद की बिना तेरे सुने ही बात हो गई।
0: ओहो, ओहो, ओहो, ओहो, ओहो।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

0: अर्ली 70s में प्लेबैक सिंगिंग में करियर बनाने अमित कुमार कलकत्ता से बॉम्बे आ गए। ऑफ कोर्स किशोर दा उनको लेकर आ गए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तब इन पर धुन सवार हुई कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सीखना है। इन्होंने 6 महीने बड़ी शिद्दत से सीखा भी, लेकिन उसके बाद न हो पाया। पर उसके बाद हुआ क्या, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने क्या शेयर किया था।
1: उस एज में क्या होता है ना, यू आर नॉट सीरियस। लेकिन पैरेलली मैं उनके साथ शोज करता रहा। एक होता ना डर, वो स्टेज का वो फ्राइट निकल गया। और फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स खुद, जैसे पहले मुझे गाना गवाया किशोर कुमार के घर के बाहर, मुझे गाना गवाया सपन जगमोहन। एक फिल्म बनी थी रामसे ब्रदर्स की, दरवाजा, उसमें गाना था। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। पिताजी आए थे रिकॉर्डिंग में, महबूब स्टूडियो में विश करने आए थे। गाना भी बहुत अच्छा गाना था। होश में हम कहां

0: में। अच्छा गाना था।
1: वेल, इनका ये गाना तो 1973 में रिकॉर्ड हुआ था और फिल्म जाके 1978 में रिलीज हुई थी, लेकिन हम यहाँ पे सुनेंगे वो गाना जिसमें मैंने अमित कुमार साहब की आवाज पहली बार सुनी थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।
2: Yeah.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: अमित कुमार ने अपनी प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत अपने फादर किशोर कुमार की फिल्मों से की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बाद फिर और म्यूजिक डायरेक्टर्स भी इनको अप्रोच करने लगे। सबसे पहले सपन जगमोहन ने इनसे 1973 में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद क्या हुआ, एक पुराने इंटरव्यू में अमित कुमार ने ये शेयर किया था।
1: सेकंड सॉन्ग मदन मोहन, किशोर तेरा लड़का गाना गाता है, तो पिताजी बोले जाओ मदन मोहन का गाना गाना है। आशा जी के साथ डुएट था, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था। है शाम बड़ी मतवाली, है शाम बड़ी मतवाली और आसमान पे लाली, इस लाली पे रंग तेरा, जैसा सिखाते ना, गुलाबी हो गया। मदन मदन जी, मैं गुलाबी हो, बोले वाह वाह वाह वाह, कितना अच्छा किशोर का बच्चा, अच्छा गाता है। उसके बाद थर्ड नंबर हुआ सलील चौधरी। वो पिक्चर पता नहीं बनी या नहीं बनी मुझे मालूम। वो गाना ऐसा था, हमको किसने जाना है, हम किसी को क्या जाने, हमको किसने माना है, हम किसी को क्यों माने, वी आर फ्री यू गो टू हेल। उसके बाद एक फिल्म आई जिसमें कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट जय कुमार पाटे, उन्होंने मुझे गवाया। वो फिल्म थी जान हाजिर है, जिसमें शेखर कपूर हीरो थे, विजय आनंद, गोल्डी आनंद, विजय आनंद साहब प्रोड्यूसर थे। नवकेतन की फिल्म जान हाजिर है, वो भी पिक्चर फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे को बुक।
0: वेल, इन सब के बाद इनकी लाइफ में आया इनका जैकपॉट गाना, जिसके बारे में करेंगे बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस गाने से जुड़ा एक इंसिडेंट अमित कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था, सुनिए।
1: उस वक्त ऐसा हुआ कि एक दिन रिहर्सल पिताजी करने गए पंचमदा के घर, तो मुझे कहा कि तू तो पंचम का बहुत बड़ा भक्त है ना, बोला चल रिहर्सल है।
2: चलो चलो चलो,
1: तो वो गया मैं रिहर्सल में। अभी भी याद है मनादा भी थे वहाँ पे, मनादा और पिताजी का एक डुएट था एक, उसका रिहर्सल। तो मैं बैठा था, तो मैं तो उन्हीं को देख रहा था, पंचमदा को देख रहा था, कब हारमोनियम बजा रहे। बाद में उन्होंने मुझे देखा, बोला अरे अमित कैसा है तू, मैंने सुना तू गाना गा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड गाना सुना। तो मैं एकदम घबरा गया, तो मैंने गाना गाया, झुमरू ही गाया मैं, बहुत बकवास गाया था मैं, मतलब नर्वस हो गया था। तो जब वापस घर आ रहे थे तो गाड़ी में पिताजी ने कहा कि
3: तेरा चांस गया,
1: स्टार्टेड ही वाज वेरी अनहैप्पी। शाम को फोन आया, बाबा ने उठाया, अरे पंचम क्या हुआ, बोले दादा अमित को कल भेजो मेरे पास फिल्म सेंटर, तो गाना गवाना है। तो मे बी ही वाज टेस्टिंग माय वॉइस।
0: इस गाने के बारे में भी करेंगे बात, लेकिन अभी वो गाना सुनेंगे जिसमें बड़ी सारी फैमिली वाइब्स हैं, क्योंकि अमित कुमार किशोर कुमार की आवाज है, आशा भोसले जी की आवाज है, कॉम्पोजिशन RD बर्मन की। ये गाना लिखा है गुलशन बावरा ने, मूवी का नाम कस्मे वादे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: अमित कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो है बालिका वधू फिल्म का गाना बड़े अच्छे लगते हैं। सुनिए आरडी बर्मन के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में अमित कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: बिकॉज बालिका वधू वाज बीइंग प्लान्ड फिल्म, तो उनको सचिन के लिए यंग वॉइस चाहिए था। उनके घर गया सवेरे, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया और लेके गए फिल्म सेंटर पे, गाना सिखाया एंड बड़े अच्छे लगते वॉज रिकॉर्डेड 1974 एंड में। बड़े

0: मैंने उस गाने का नाम भी रखा है माई ब्रेड एंड बटर सॉन्ग। उसी गाना से मेरा एक फाउंडेशन तो जरूर हुआ। और पिताजी बहुत पीछे पड़ते थे, जब भी कोई स्टेज शो हो तो जैसे पिताजी के बाद मुझे गाना है तो उस तक मेरा यही एक ही गाना था, तो मैं जाके बड़ा बकबक करता था स्टेज पर, अब मैं आपके सामने जो गीत पेश करूंगा ये मुझे ऐसा किया था ऐसा किया था, बड़ बड़ बड़ बड़ पीछे विंग्स में पिताजी खड़े होकर बोले गाओ ना, गाता कोई को नहीं इतना बकबक कर रहा। फिर मैंने बड़े चक्के तो वहां से बड़े
1: तो बड़े के चक्कर में इस छोटे को बड़े से काफी पड़े हैं। सुन लेते हैं ये आइकॉनिक गाना रिटन बाय आनंद बख्शी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची। बड़े

0: 1976 की फिल्म बालिका वधु का आइकॉनिक गाना बड़े अच्छे लगते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अमित कुमार के करियर का ये एक टर्निंग पॉइंट माइलस्टोन गाना था, लेकिन उनके हिसाब से सही मायने में उनको सक्सेस किस गाने से मिली? एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: सक्सेसफुल हुआ मैं मेरे ख्याल से 1980 में लव स्टोरी एक फिल्म बनी थी जिसमें सब गाने हिट हुए। याद आ रही है, देखो मैंने देखा एक सपना, कुमार गौरव के साथ मेरा टीम हो गया, अगेन पंचम दा ने गवाया मुझे, एंड ही यूज्ड टू हेट द सॉन्ग्स ऑफ लव स्टोरी। खुद म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा के खुद के ट्यून, बट ही यूज्ड टू हेट। वो मुझे बोलते थे क्या क्या गाना तेरे को पसंद है, मतलब कौन सा, याद आ रही है बाबा तुम्हारा है, इट इज यू, मतलब देखना एक नहीं चलेगी, और ऐसी चली गाना। फिर मैंने उनको फोन करके बोला आप बोलो, चुप ठीक है, तू तो स्टार बन गया। और आफ्टर माय फादर ही वाज द पर्सन हु रियली पुट मी देयर, चल कम ऑन।
0: वेल, इस गाने के लिए अमित कुमार को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो सुन लेते हैं दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। थोड़ा सैड है, लेकिन उदासी में भी कितनी खूबसूरती होती है। ये उन गानों में से एक है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना होते हुए भी आपको ब्रेकअप का एहसास दिला देता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। यार, इन्होंने तो मीडिया से ब्रेक लिया था, वो भी एक नहीं दो नहीं 18 महीनों के लिए, लेकिन अब तो ये स्टोरी और पोस्ट अपलोड कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ रणवीर सिंह की। यार, सो बेसिकली आदित्य धर डायरेक्टोरियल इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर जो है इज हेडिंग टू जापान, क्योंकि 10 जुलाई को ये फिल्म वहां भी रिलीज होगी, जिसके बारे में रणवीर ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म किया। एंड दैट मेड मी थिंक कि भाई, इन्होंने तो 18 महीनों का ब्रेक लिया था फ्रॉम मीडिया, बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज कि मीडिया और सोशल मीडिया में डिफरेंस होता है। श्रुति, बाबा निराला की कहानी में और ड्रामा बढ़ेगा विद सीजन 4। वेल, मैं बात कर रही हूँ प्रकाश झा की मच लव्ड सीरीज आश्रम के बारे में, जिस फ्रेंचाइज के फोर्थ पार्ट की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। द टेंटेटिव डेट इज अराउंड मिड अगस्त। लेकिन भैया, सबसे पहली चीज जो इस टीजर के बारे में मैंने नोटिस की इज द बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसने मेरे दिल में एक्साइटमेंट का लेवल और भी ज्यादा ऊपर कर दिया है। ताकि इमरान हाशमी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है यार, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज अ फीलिंग, ही इज एन एक्सपीरियंस। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

एक्टिंग कर रही थी रंभा, लेकिन सुनाई दे रही थी तबू। हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। मैं बात कर रही हूँ फिल्म जुड़वा की, जो 1997 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय डेविड धवन, जिसमें सलमान खान, करिश्मा कपूर और रंभा लीड रोल्स में थे। तो फिल्म में रंभा एक्टिंग करते भले ही नजर आ रही है, लेकिन जो आप सुन पा रहे हैं वो उनकी नहीं, तबू की आवाज है, जिन्होंने रंभा के लिए इस मूवी में डब किया था। नॉट जस्ट दैट, ये फिल्म पहले गोविंदा करने वाले थे, लेकिन फिर जब सलमान खान को इस चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने गोविंदा से रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज ये प्रोजेक्ट मेरे नाम कर दे, जिसमें गोविंदा अग्रीड एज वेल। और इसी के साथ फिल्म जुड़वा सलमान खान और डेविड धवन की पहली फिल्म बनी जिसमें दोनों ने साथ काम किया था। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।